0: क्या बात है।
1: ये कजरी है और पहले तो होली होती है फिर चैती होती है, क्योंकि होली तो दरअसल चैत में ही होती है। एक पहली चैत जो बरजोरी जिसको कहते हैं
0: जी
1: लाल।